0: ये ठीक है जिक सिंदा ये ने दे ये नालो दे जिक सिंदा दे बेर चेन्याम तो दे दे सिंदा दे ये ने या सोप्तो दे जिक सिंदा
1: वो दे गां तो है हम वो दे चेन्या
2: तया चाहा किसा
3: चाहते ले दूर दूर चुगे
2: चाहा दिस दिस के बा के यो मारे रामपो लो चिंचिन मारे हानी फां दे पेजिस तांदा दे नांग जुजे जोने रंगचुंग मेंस रे
4: 这张家里的感情名字啦张南部也不是车艺四岁这孟友的爹姐韩立芳陪着他的这个人都是刚就长期婆婆当四岁这孟友呢就是地里人子去婆婆当而你出现当呢所以也不是人给这样我是查查都是也做苦下了你让了陪着大家的韩立芳给天在沙布的日子起落了呀你没有我了呀妈妈细细细的南部了呀南部帮部也不是有的
5: 韩立芳的五年要多韩立芳跟踪电给阿玛拉的八个门子也不是那热闹他是温州传媒强国长韩立芳从康公司朋友们说明着三百五韩立芳从康林国下蓝体给科普洛车开出韩立芳从康明了大姐前年明年给年个列车毕竟避免堂铁位人心给明年中路苏里面在新旧康堂银通参在娘这期明了七这级别接心起过比较银明了大姐前子明年给年团委呢先突破了肯穷给我找你谁毕竟避免堂铁位人心给明年中路苏里面在新旧康给按这速度给面具起的三十多月经铁链帮电卷个堂明兔藏是木狗子狗
6: 婆尼东哇王子娘不介意铁西克让米热不热气不烫米塞不米通哇米就团吧米干不说给年团月子毕竟避免烫铁位人心给明年中路苏里面在新旧康了撇烫我要了卡巴尔烫从康南烈片给观众额就人民大街烫人民娘们能小别过年撇巴尔各所学三年哈斯创给林国的下浪爬过从中给年长陆地卡巴尔烈火给估计初期暗暗暗泥处即顿松也过过过顿暗泥处
7: 好几个不同，那就团吧。那干部说的，那空地不面积。预防那当哪位数据看了片段，我们就给直接的人民识别的，你们领导出了过年了，我进屋的了，年前给孙娜来追问，别当事情的。那娃那所动的当，四处啷个？那娃五只掌握手机，那娃地不面积。那当哪位数据看了片段，我们就给直接的，起来给老子团的人民识别的，你们领导出了。预防那当哪位数据看的，那娃我不当，那娃张事情的给了。
8: 第六个，那我是经验。预防那当哪位数据看的，给用给目击才不嫌疑。他的卡巴给不及，起来给协助团的，给那当哪位那段了打更轻易。
9: 预防那当哪位数据看的，对他进行结果比较严。那当哪位那段看了，从高度片面识别人脸上的，果果当果蔬果类玫瑰。
10: 他身上的他是中介，尽管去两者破浪，卡巴按照两个月估计初期送个几几个，实际上的实际中介深处是去扎的几浪，卡巴按照两个月估计，给个按个果果处。